0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持，欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座，我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: York कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और York कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो York कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या York कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: What's up world, it's King Hearts, YCRadio.org, the voice of today's generation.
2: You, my friend, have connections in the government. Yes, you. USA.gov, the official source for government information on thousands of topics. And like any good connection, there's no telling where it can take you. Why, one day you're getting student loan information. Next thing you know, you need job hunting tips. Today's road construction info could have you searching for telecommuting ideas tomorrow. The more you use USA.gov, the more uses you'll find for it. Passport applications, for example. They've been known to lead to a sudden interest in travel advisories. Our new mobile apps will even update you on the go. So whether you have information to get or ideas to give your government, check out USA.gov. Who knows? Lottery results today could lead to retirement planning tomorrow. USA.gov. With the right connections, there's no telling where you can go.
3: 约克学院的同学们，请注意。2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
4: Hello, my name is Kamel Ellis and I host a show with my co-host Ms. Lisa Ray, Radio One World Best Global at YC Radio Studios, located at York College, the City University of New York in Jamaica, Queens. Radio One World Fest Global airs every second and fourth Thursday at 6 p.m. Eastern Standard Time. You can listen to us on the TuneIn app or TuneIn.com and search YC Radio. You can call us even on our hotline at 718-262-5294 as we discuss topics that affect us locally and globally. Don't forget, Radio One World Fest Global airs every second and fourth Thursday at 6 p.m. Eastern Standard Time. Check us out on the TuneIn app or TuneIn.com where you search YC Radio. Call us on our hotline, 718-262-5294, as we discuss issues that affect us globally and locally. Have a good day. See you soon.
5: Chris, you're not acting like a grown-up in our relationship.
6: M2!
5: There's your comic book collection, the race car bed.
6: I'm young at heart, but I put money into my 401k every paycheck. I'm taking control over my financial life, and that feels pretty grown up to me.
5: Put away a few bucks, feel like $1 million. For free ideas and easy ways to save, go to feedthepig.org. That's
6: feedthepig.org.
7: Are those footy pajamas?
8: This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
9: This is Alon the Don of the late 80s. You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.

0: I'm Guru Chris, and this is YCRadio.org.
1: Do you dance badly or hug in public? That's okay. You don't have to be perfect to be the perfect parent. Thousands of teens in foster care would love to put up with you. Call 1-888-200-4005 or visit AdoptUsKids.org for more information. A message from the U.S. Department of Health and Human Services, Adopt Us Kids, and the Ad Council.
2: Hello, everyone. I'm here to tell you all about two of your college's most progressive and engaging programs. I'm talking about the Male Initiative Program and the Women's Center. What both programs have to offer are a wide variety of opportunities assisting students academically and socially. To find out more about us, come to the Male Initiative Program in room 3MO2 or call 718-262-3772. For the Women's Center in room 3CO1, call 718-262-2008. Again, to find out more about us, come to the Male Initiative Program in room 3MO2 or call 718-262-3772. For the Women's Center in room 3CO1, call 718-262-2008. Thank you.
3: York College के छात्रों ध्यान दें। शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और York College की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो York कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या York College स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
4: Okay, so 5 tacos of cheese and a large soda, that's $10,012. Please drive around.
5: Wait, 10,000 what?
4: It's obvious you're buzzed and driving.
5: I've only had a few, I'm fine.
4: Yeah, the food's 12 bucks, but getting pulled over for buzz driving could cost you around $10,000 in fines, legal fees, and increased insurance rates. Please drive around. Actually, just park and come in.
6: Nothing kills a buzz like getting pulled over for buzz driving, because buzz driving is drunk driving. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
7: You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: Hey, you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation. This is your host, Kenny Williams, at Laugh Therapy.
1: You have connections in the government, and there's no telling where they can take you. USA.gov, your official source for all government info. Who knows? Student loan and job hunting tips today could lead to retirement planning tomorrow. USA.gov.
2: Your college ke chhatron, dhyan de. शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
0: Hi, I'm Kenny Williams.
3: And Lisa Ray.
0: We'll be hosting a show called Laugh Therapy, a show focusing on the healing power of comedy, using anecdotes, discussions, and interviews. We'll show you how laughter is the medicine for the soul. Tune into YCRadio.org every Wednesday at 2 p.m. with your host, me, Kenny Williams.
3: And Lisa Ray.
0: Make sure you listen in on a free TuneIn app on any mobile device or YCRadio.org. The voice of today's generation.
4: 'Cause I ain't no joke.
5: You can be a hero by being prepared for an emergency. First, make a plan. Call a family meeting to plan for things like how to connect with loved ones after an emergency or your escape route.
6: I am not fast.
5: Build a kit. When disaster strikes, it's important to have enough supplies to last 3 days. And don't forget the batteries.
6: Low battery.
5: Visit ready.gov/kids for more preparedness tips. Brought to you by FEMA and the Ad Council.
7: What's going on, everybody? This is Mike Kimali, and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation. Listen.

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意。 2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持，欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座，我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意。 2026至2027 学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: Before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: What up though, it's DD Finesse that is, and you are listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Green light. Hey girl, school zone. I'm getting hungry, car changing lanes. You want to meet me for pizza? Stop sign. Intersection clear. Yeah, street. Pizza sounds good. Ball in street? Girl in street!
2: It's hard to concentrate on two things at once, like texting and driving. Stop the text, stop the wrecks. How will you stop texting and driving? Tell us at stoptextstoprex.org. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
3: Are you interested in radio broadcasting? Volunteer to be a staff member and learn what goes on behind the scenes at York College radio station. Bring your ideas and passion, joining a team of your peers in the capacity of on-air announcer, programming, marketing, news, sports, entertainment, visual arts, web design, and of course, music. Whether you are seeking to be an engineer, producer, or wish to have a promising career in the media and communications industry, volunteering as a staff member at YC Radio is a great way to add real work experience to your resume. Come to room 1G06G or call 718-262-5293. That's room 1G06G, 718-262-5293.
4: Spina bifida is a common birth defect, and everyone with spina bifida from childhood through adulthood deserves to flourish. The Spina Bifida Association is creating a future where this is more than just possible. It's inevitable. We're advancing clinical care and shaping innovative research. With your help, we'll build the future that people with spina bifida deserve. Join us at sbaa.org. That's sbaa.org. This message is sponsored by the Spina Bifida Association of America.
0: What up, though? It's DFNS, YCRadio.org, the voice of today's generation.
5: Your college ke chhatro, dhyan de. शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें। One,

0: This is Young Star, and this is YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: How's it going?
2: I'm having a stroke.
1: Are you going to shake my hand?
2: I'm having a stroke.
1: Wow, you're not even moving your arm.
2: I'm having a stroke.
3: When someone is having a stroke, they may not be able to say it with words, but their body language will tell you loud and clear. Look for FAST. F, face drooping. A, arm weakness. S, speech difficulty. T, time to call 911 immediately. Know the sudden signs. Spot a stroke fast. Visit strokeassociation.org. Brought to you by the American Stroke Association and the Ad Council.
4: Time to join your college newspaper, Pandora's Box. Are you a good storyteller? Do you like writing? Are you a curious person? Then come write with us at Pandora's Box. It's your college paper. We encourage all majors to join. There are positions for graphic editors and business managers. Our work at PB tells the stories of York and the surrounding Jamaica community. The newspaper is a platform for all students, faculty, and local voices to learn and practice the art of news gathering. PB staff are the watchdogs for the Jamaica community and give a voice to the college's student body. Get experience for life in the real world. Report and write with us.
5: You know what really gets a party started? Indoor baseball. Yeah, just find a broom or a pool cue and you can use like anything as a ball. Cans, bottles, shoes.
6: Hey, bro, toss me that avocado.
7: Most party fouls are pretty dumb, but if you decide to drink and drive underage, you could lose your license and your freedom. Underage drinking and driving, the ultimate party foul. Learn more at ultimatepartyfoul.org. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
8: Hi, my name is Diana Cuevas. I'm from the cross country and track and field team. You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
9: Your college ke chhatro. ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: I don't want it. YCRadio.org. This is Kawhi, the last word, and I am the voice of today's generation. How you feel about that?
1: My suit can still make an impression.
2: And my lamp can bring others a bright future.
3: Because when I donate my stuff to Goodwill, it helps fund job placement and training for people right in my community.
4: Goodwill. Donate stuff. Create jobs. Find your nearest donation center at Goodwill.org. Brought to you by Goodwill and the Ad Council.
5: YC Radio has time slots available for current college students, faculty, and staff who want to host their own radio show. You've probably just asked yourself, what kind of show could I do? Well, let me ask you, what are you passionate about? Is it reading, cooking, music? How about health and wellness? Or maybe you enjoy learning and talking about history, current events, interview others in their related fields. This is only for current college students, faculty, and staff. Host a show at your college radio station and be a part of our community. So what do you say? I say call Brian Graves, 718-262-5293. Be the producer. Host your own radio program, 718-262-5293. Or go online and fill out an application. Be a voice for this generation. YCRadio.org, the voice of today's generation.
6: Your college ke chhatron, dhyan de. Shaikshanik varsh 2026 se 2027 ke liye FAFSA. FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
7: Major key alert, don't ever play yourself. Life is like school. You will be tested, so pass it.
8: Learn the real major keys to getting to college at GetSchooled.com.
7: Stay focused. Now that's a major key alert.
8: Brought to you by Get Schooled and the Ad Council.
0: What's going on, people? Shaman Exile. YCRadio.org is the voice of today's generation. Let's get it.
9: Now this for a feather threat.
10: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
11: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a lover.

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: 克学院的同学们，请注意2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
1: Your college के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
2: Hey yo, hey yo, what up? This Vicious and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation. Hot Scott.
3: My name's Michaela. When I got back from Iraq, I became pregnant and ended up homeless. Counselors helped us apply for VA supportive housing.
4: VA offers programs to help eligible veterans stay healthy, find a job, and secure or maintain safe, stable housing.
3: My life works now. I got help from VA, and now I'm on a mission to share these resources.
4: If you or a veteran you know is homeless or at immediate risk of becoming homeless, call 877-424-3838.
5: Interested in radio broadcasting? Volunteer to be a staff member and learn what goes on behind the scenes at your college radio station. Moreover, bring your ideas and passion, joining a team of your peers in the capacity of on-air announcer, programming, marketing, news, sports and entertainment, visual arts and web design, and of course, music. Whether you are seeking to be an engineer, producer, or one day have a promising career in the media communications industry, volunteering as a staff member at YC Radio is a great way to gain real work experience to your resume. For more information, call 718-262-5293 or visit YC Radio Station, room 1G06G. Again, for more information, call 718-262-5293 or visit YC Radio Station, room 1G06G.
6: Hey man, I always see those pics you post of you and your family at special events. What gives?
7: Oh yeah, VetTix. VetTix gives.
6: What's VetTix?
7: VetTix is an awesome charity that gives free event tickets, you know, like concerts, sporting events, and shows, to currently serving military and vets, including the immediate family of troops killed in action.
6: I've got extra tickets. Can I donate them?
7: Yeah, it's easy. Just go to vettix.org. You could give your extra tickets and other vets like me could sign up to get them.
6: Cool, I'm on it. And hey, thank you for your service.
8: What's up, world? It's King Hearts. This is YCRadio.org, the voice of today's generation. Y'all already know what it is.

0: Thank you for listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Nosotros compartimos un mismo deseo. Quisimos servir a nuestro país y proteger lo que amamos. Estuvimos listos para enfrentar cualquier misión. Pero para algunos de nosotros, regresar a casa era un desafío más grande de lo que esperábamos. En el ejército contábamos con el apoyo de nuestros compañeros. Pero como veteranos, nos sentimos como si estuviéramos solos.
2: Para ayuda confidencial, llame 1-800-273-8255 y empuje 1. Charla con alguien en veteranscrisisline.net o mande un texto a 838-255.
3: Yo, college ke chhatro, dhyan de. शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
4: Your college is looking for a DJ. No radio station is complete without DJ, and that could be you. Come talk to us in room 1G06G. Email us at bgraves@york.cuny.edu. Call us at 718-262-5293 or visit our website, ycradio.org. Once again, email us at bgraves@york.cuny.edu. Call us at 718-262-5293 or visit our website, ycradio.org. We'll be looking forward to meeting you. ycradio.org, the voice of today's generation.
5: We asked kids what it took to be a dad. This is what they had to say.
6: A father is always present. I mean, what real father figure can you have if they're not there?
7: In order to be a good dad, you need to love your son. You need to put gas in your car so you don't break down in the middle of nowhere. And you need to make them breakfast. Yep.
8: I mean, just to maybe play like a board game with me, or to just stay home and play some video games with me. Just to do like that one little thing is what I really look forward to.
9: I'm not asking him to be a perfect dad, but he should try.
6: He's just a constant force in my life.
8: There's no other type of love like a dad's love because it's not comparable to anything else.
5: Take time to be a dad today. Call 877-4DAD-411 or visit fatherhood.gov. Brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
10: 约克学院的同学们，请注意 ,2026 至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助。包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻。尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。 如需了解更多信息，请扫描 FAXA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAXA 和 TAP 申请。
11: Yo, what's good? This is Mark Taylor at Official Mark Taylor on IG. You are now listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
12: Host your own show. Visit YCRadio.org and fill out an application.

0: 克学院的同学们，请注意2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持，欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座，我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
1: Your college के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता

ताकि लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: Hi, I'm Dan.
1: Hey, what's up? I'm D-Nail.
2: Hey, what's up? I'm Rob Bass.
0: And we are the group
1: Solo. And you're listening to
0: YCRadio.org.
2: The voice of today's generation.
3: Did you just look down at your phone? You did it again, didn't you? You know, you're flying down the road in a 3-ton hunk of steel. And a text takes your eyes off the road for an average of 5 seconds. At 55 miles per hour, that's long enough to travel the length of a football field and cause some serious damage. Turn it off. Trust me. Whatever it is, you'll live.
4: Learn more at StopTextStopWrecks.org. Brought to you by the Ad Council and the National Highway Traffic Safety Administration.
5: Hi, I'm Kenny Williams.
6: And Lisa Ray.
5: We'll be hosting a show called Laugh Therapy, a show focusing on the healing power of comedy, using anecdotes, discussions, and interviews. We'll show you how laughter is the medicine for the soul. Tune into YCRadio.org every Wednesday at 2 p.m. with your host, me, Kenny Williams.
6: And Lisa Ray.
5: Make sure you listen in on a free TuneIn app on any mobile device or YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Because I ain't no joke.
7: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें।

0: जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या York कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: And inform your community. We combine topics that people want more information about with fun events like crafting, movies, and games, which cover information on a range of topics that impact what happens in the United States. Now we're taking our nonpartisan virtual events and launching in-person chapters around the country. Get informed and have fun while you're at it. Let's grow together. Sponsored by Inform Your Community, a nonpartisan nonprofit. Come visit us at informyourcommunity.org.
2: What's up, world? It's King Hearts. YCRadio.com.

योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न

रन की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: 约克学院的同学们，请注意2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持，欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座，我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
1: Your college के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: This is YCRadio.org, the voice of today's generation.
2: Chris, you're not acting like a grown-up in our relationship.
3: M2!
2: There's your comic book collection, the race car bed.
3: I'm young at heart, but I put money into my 401k every paycheck. I'm taking control over my financial life, and that feels pretty grown-up to me.
2: Put away a few bucks, feel like a million bucks. For free ideas and easy ways to save, go to feedthepig.org. That's
3: feedthepig.org.
2: Are those footy pajamas?
4: This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
5: Time to join your college newspaper, Pandora's Box. Are you a good storyteller? Do you like writing? Are you a curious person? Then come write with us at Pandora's Box. It's your college paper. We encourage all majors to join. There are positions for graphic editors and business managers. Our work at PB tells the stories of York and the surrounding Jamaica community. The newspaper is a platform

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के

0: लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या York कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA और TAP